0: सरस्वती
1: मिथ्या नाहि रसना पार्स मन में प्रीति निरंजन दार्स
0: कथ्य रूप न पिता नितर साध पिता संग संग हेत
1: नाना सुने काहू की निंदा सबते जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद दिखिया पर हरा मन की पासना मन पे तरा
1: इंद्री जत पांच दोग ते रहत नान कोट मदे को ऐसा अप्रस
0: रैसु सोजिसी ऊपर सोपर

0: कबू पेखारी नीच का साजा
1: मैं आवे कबू पला पला कहावे
0: जो प्रभु राख्या तिब ही रह गुर प्रसाद नान सच कहै
1: पंडित करे व्यान कबू मोन तारी लावे ध्यान
0: कबू खट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: कीट हस्त पतंग होई जिया अनक जोन पर मैं

0: नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड,
1: नाम के तारे सुमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान,
0: नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे सगले आकार,
1: नाम के तारे पुरिया सा पवन, नाम का सांग उतरे सुन श्रवण,
0: कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन।

0: मारोचीत
1: जन कमला तो मन माहि जन्म जन्म के किल बिख जाहि
0: आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो
1: साहु सत हर को नाओ सह सुभाए नानक गुण गाओ
0: गुण गावत तेरी उतरस मैल बिनस जाए हो मैं बिख फैल
1: होहे जंत प्रसाद नार सास रास हर नाम समाल
0: छाड़ सियानब सगली मना साध संग पावे सच तना
1: हर पूंजी संच करो विहार इहा सुख कर गय जाकार
0: सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके

0: चरण को कहा विनाशन।
1: जब पूरन कर्ता प्राप्त हुई तब जम की त्रास कह किस हुई।
0: जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा।
1: जब नाथ निरंजन।

0: बृहस्पति।
1: आप कथे आप सुन रहे हार, आप है एक आप विस्तार।
0: जात भारत श्रेष्ठ उपाय, अपना पाया नहीं समाये।
1: ते पहले नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए।
0: जाप प्रभु आप जाए, सत नाम सोई जन पाए।
1: का बेता नानक सगर श्रेष्ठ का जेता।
0: जी जंतर सब ताका हाथ, दीन दयाल नाथ नाथ।
1: जिस राखे तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस

मुक्त जुगत हर का नाम जानका त्रिवत उपगत हर का नाम जानका रूप रंग हर नाम जपत काव पर भंग हर का नाम जानक वडियाय हर का नाम जान सोभा पाय हर का नाम जानक भोग जोग हर नाम जपत कष्ट नाह वियोग ज्ञान रात हर नाम किसी व नानक पूजा हर हर दिव हर हर जनक मार्ग जिना हर तन जनक वाप प्रभ दिना हर हर जनक ओट सतानी हर प्रताप जन

स्वाम सकल कटा के अंतर जाम जी अपनी कात मिल जान हो आप ही अपने संग आप रब रहा ते तुमरी उस्ताद तुम ते फिर नान कबर न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जाम निर्मल कर्म सकल क्रिया मध्यम क्रिया सा संग धर्म तुम्हारे क्रिया सकल तुम तुम पर हर को नाम जप हो जी सदा सगल बानी महामृत बानी हर पजा सुन रसन बुकानी सगल था देहु उत्तम था नान जिह पाड़ बस हर नाम सलोक निर्गुणी आर ए अनिया सुप्रभ सदा संभार जन किया ते चित राख नानक ने बिहनार खद्र मैया के गुंचेत प्राणी कौन बुद्ध कौन दृष्टानी जन तू साज सवार सी गारिया

सर्वांग कह पिंगल पर्वत पर भवन भूत उठाव श्रवन करतार करुणाव दीन बेन्ती कर नान तुम्हरी कृपा तर संग सहाय सुवन जीत जो वैर सुप्रीत

करी है, अपनी प्रतियोगिता भी हुआ है। वह उसका विश्वास नवज रख प्रभु की आज्ञा माना माथे उसके चौकन खरे निखर नानक साहिब सदा दया रंग पैतमाया की सर पर्वत जाना नियत गुर की शायर सिंह रंग डावे ऊह बिन समर पुछतावे।

हर हर जह कह दो। जी प्रसाद तिर सगल सिधर ठाकु मन सरणी पारु ठाकुर प्रभु ताके। जी प्रसाद तुझ को ना पाहु जय मन सा सा सुमिरि प्रभु जय। जय प्रसाद पायु तो लाभ दी नानक तक भगत करिए। जी प्रसाद वा पुखन पहरी जय मन ते सिमरत कुमार सिय जय। जय प्रसाद सब हस आस वार मान ते प्रभु कौ कबहु न बिसार। जय प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रभु अपने मारा जेन तेरी मर बन तुम आयु उठ बैठ तो साधु तुसह त्यायु तुसह त्याय जी का रख है इहु हनान तेरे रख है। जय प्रसाद करह पुन बरदान महाराज कर कार जय प्रसाद वह चार ब्याह हर दस प्रभु का सास सास तारे। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सुप्रभ समर सदानुप। जय प्रसाद तेरी निकी जा सुप्रभ समर सदा रात। जय प्रसाद तेरी पात्र है गुरु प्रसाद नानक जस कहै। जय प्रसाद सुनहि करन नाद। जय प्रसाद भीख बिस्मय। जय प्रसाद बोले अमृत रसना। जय प्रसाद सुख सहज वसना। जय प्रसाद हस्त कर चरण है। जय प्रसाद संपूर्ण भरा। जय प्रसाद परम गत पावे। जय प्रसाद सुख सहज समावे है सब प्रभु त्याग करु कतरा। गुरु प्रसाद नानक मन जागहु।

ब्रह्म ज्ञान के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञान का नाश अभिमान ब्रह्म ज्ञान ऊचते ऊचा मन अपने है सबत निचा ब्रह्म ज्ञान से जन पय नानक जन प्रभाव करी ब्रह्म ज्ञान सकल की ब्रह्म ज्ञान चिन्ह ब्रह्म ज्ञान के सब ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान के काश

सगर संसार ब्रह्म ज्ञान कई का रंग ब्रह्म ज्ञान का बस ब्रह्म संग ब्रह्म ज्ञान का नाम आधार ब्रह्म ज्ञान का नाम परवार ब्रह्म ज्ञान सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञान अहम बुद्ध जागत

परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञान की कीमत ना ब्रह्म ज्ञान का सकल मन वाहि ब्रह्म ज्ञान का काम जान भेद ब्रह्म ज्ञान को सदा देह ब्रह्म ज्ञान का कस जाना जाता और ब्रह्म ज्ञान सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञान की मेत कौन बखान ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान जान ब्रह्म ज्ञान का अंतर पार नानक ब्रह्म ज्ञान को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञान।

तैसी बेकम खाटी, तैसा स्वर्ण तैसी सम्राटी, तैसा अमृत तैसी बेक खाटी, तैसा माता माता सरंग, तैसा राजान जो वरताय साई जुगत नानक नानक गुरु पुरख कही आजीवन।

सोई कई कूट पार ब्रह्म के दास दिन हो गए आत्म प्रकाश कई कूट दात के बेत सदा ने हर है पुनेत्र कई को नाम रह भी वह मर भय साध साध ही वह कई कूट नाम गन गा वह आत्म रास सुख सहज समा वह अपने जन को सास सास समाज नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक कारण कारण प्रवी कह दूसर ना है कोई नानक तिस बल हारण जर धर्म हिगर सोय पद कम करावन करण जोग जुग पाव सोय होग खेर वह था पुनरंत नहीं किस पार बार हुक्म तार तार रहावे हुक्म अबजा हुक्म समावे हुक्म उच नीच व्याव हर हुक्म अनक रंग प्रकार कर कर दिखा अपनी बढ़िया नाम सा में रहे और समाई

ज्यों प्रभु राखे तिब ही रह गुरु प्रसाद नाम है जो कहे कबू हुए पंडित करे बखियान कबू मंत अजला बत्यान कबू तट तिव से स्नान कबू सिद्ध साध कुम ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग हुई जियान जन परम है परम या नाना रूप जस वागी दिखा जो प्रभु पावत बन जा जो पावत सोई हुए नानक दूजा बना कोई कबहू साध संगति हो पावा सस्थान ते बाहर न आवे अंतर हो ज्ञान प्रकाश उस स्थान कर विनाश सुमंत नवरति करंग सदा बस पार्वन के संग जो जाल में चला इकटाना त्यों ज्योति संग जो संबंध मिट गए गवन पाए बसराव नानक प्रभु का साध कुर्बान श्लोक सुख बसा मस्किन गवन वार तली बड़े बड़े अहंकार नानक गर्व करे अष्टपदी

परवान कूट कर्म कर हव तारि विश्राम पावे सगरे वीर थारि अनक तपस्या कर अहंकार नरक सुख फिर फिर अवतार अंग जतन करा तुम द्रव हर तर्क कहो कैसे गवे आस को जो परा कहावे तो सब पलायन करना आवे।

संत का नंद को महाताई संत का नंद को केन टिकन ना पाए संत का नंद को महातियारा संत का नंद परमेश्वर संत का नंद राज संत का नंद दुखियार दीन संत

संत के दुख की पूजा न आसा, संत का दुख उठ चला निरासा, संत का दुख न दृष्टा पूजा है पवित आसा, कोई हुए पया करत न मेटे को नान जान सचा सुख सब कर दुस की ओह करने आर सदा सदा तस्का नमस्कार प्रभु की ओस्ता तो कर।

जन श्री श्रोक जहु श्यान सो जन सिमरहु हर हर राय ईगा सहर मन कमरान दु परम पाव जय पदी मानव पिटी गृत सब जान दिवन कोई का भगवान जो कह दिया।

सुप्रसन्नाष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन् मराकुमान अनुप्रीत्याग ऋतिपरायण विष्पय सर्वनिरंत्री कुशयाप विनापिदान गहिर्गंभीर गिहिर सजान पार्वन परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल भुक्षांद

अपने शिवालय नान सो शिव कर देह दे प्रगटाया नीकी गिरी मह काल राख है भस्म करा लश्कर पूरा कर सन काट देवता कव राख तदी कर हाथ मानस जतन करत बह पात तस की करत व्यर्थ जात मारा नारा कवन को सर्व जीना कर राख सुई कह सोच कर हरि प्राण जब नान प्रभ राख वाणी बार बार बार प्रभ जब पी अमृत हुमा तंत्र पिया नाम रत्न जिन कर मुख पाया देस की शावर नाम दृष्टाया नाम तान नाम रूप रंग नाम सुख नाम कसंग नाम रह जो जान द्रुपता ने मान तान नाम है नाम समाने उठत बैठत सुवत नाम कहना न जन का सद काम बोलह जा सजीह वह दिन रात प्रभ अपना जन की निंदात ग्रह भगत आत्म के जाय प्रभ अपने स्मरह समाय जो हुआ हुआ तो सो जान प्रभ अपने का गुण पहचान तह महिमा का अनुभव का नाम तह गुण कही न जान वाट पहल प्रभ से हजूरे कहो नाम से

सा सुबह बज हर बिसरणी। अन कियो उपाय विरोग न जाय, रोग मिटे हर अवकत लाय। सर्व निदान में हर नाम निदान, जब नान कर के प्रवान मन प्रबोध हर कनाय। देह तिस तावता बैठाय, ताको बिघन न लग को जा कर। बस हर सोए कलता दिखा, हर नाम सिमर सिमर सदा सुख।

से पूर्ण कुर्मांत सद संप्रादिहु निवास सर्वसुमिरान प्रकाश रूप सर्वगुण निर्गुण निरंकार सन समाधि आभापन ज्ञानान का भी प्रजापष्टपदी

बिन बैठ कह हुक्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शतर लगत कह गीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समाव तह किस भूख कवन त्रवताव। करुण करावन करण आनन करते का नाह समार। जब अपन सुभावन संग बनायुता कौन वाय बा मित्र सुत पाई। जह सर्व कला आप है प्रवीण तह वेद प्रदीप कह कोचीन। जब अपना आप आप उतार तब सगन अब सगन कह विचार। जह अपन बुझा अपना निगरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया जीरा। विस्मन विस्म रहे विस्मान नानक अपनी गत जान हुआ। जह अशाल अशेद पेद समाया वह किस व्यावत माया उस कवाप आदि उस देहो गण का नाह प्रवेश। जह एक एक एक भगवानता तह कौन अजंत कहला के चिंता। जहाँ अपना आप आप दियारा तह कौन कथ है कौन सुनने अरब व्यंत।

जाही। तेह ते दूर कह को जाय उबर रखन आरत आय निरुपाव जब सकल पाव मिट प्रभु कृपा तु प्राणी छोट देह प्रभु राख दहना दुख नाम जबद मन उद सुख चिंता जाय मिट अहंकार तेह जन को पुए न पर सुनार से दुपुर ठाडा गुरु सुबरा नानक दा कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पीखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनुरूप सफल दर्शन सुंदर हार दान सेवा शिव प्रवान अंतर जम गुर प्रदान मन बस सोतने हाल ताक निकट नावत काल अमृत पय अमृत पद पाया सत्संगान कर दिया सरो ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान दीर्घनाश हर कृपा ते संत पीटिया नानक मन प्रकाश सरस्वती संत संग अंतर प्रभु डीठा नाम प्रभु कला का मीठा सगल समिग्री एक स्कट माय हन करंग नना दृष्टा नाम नियत अमृत प्रभु का नाम देह मैं कब सराम सोन समायत अनहत दहनायत कहन जय अचरज समायत दीख आज हवद काय नानक देह जन सोजी पाय सो अंतर सो बाहर आनंद काट कट व्याव रहे भगवंत तरन माहि आकाश पायाल सर्वलोक पूर्ण प्रत पाल बंत इन पर्वत पार ब्रह्म जय सी अगत करम पावन पाणी व संतर महचार कुंट दह दिशे समाहि तेह ते बेना नह को ठाकुर प्रसाद नान सब पाय वेद प्राण सुप्रत में अधिक सशिगर सुवर्ण किया तर मही एक बाणी प्रभु सब को बोले आप अडोल न कब हुडोल सर्व

बोध ज्ञान सर्वदा सिद्ध विद्या तप जोग प्राप्त ज्ञान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम सना अहंकार उदास कौन प्रकाश सब के मद सगल देवदास चार पदार्थ कमल प्रकाश सब के मद सगल देवदास सुंदर चतुर तत् कविता समदर्शी एक दृष्टियुता यह हाल तिस जन के मुख पने गुरु नानक नाम वचन वन सुनी यह नदान जप मन कुए सब जुग महता की गात हुए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मृतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम।

राग रंग जाके अंग राग रंग जाके जात पात नाना गर्भ गंजन दुर्ट भजन मुख दायकाम आप रूपम भी काम उस्त से पुरखत होता है गर्भ गंजन सर्व

पूरा सतगुर ध्याया। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज फरमान करते, हर एक इंसान सुख दी भाल विच है। हर एक दी यही अरदास है जीवन दे विचों दुख निकल जान, सुख मिल जान। ते गुरु अर्जन देव महाराज जी पातशाह फरमान करते ने, हे इंसान सुख लैना चाहना है जा इंज कह लईए कि मन की अवस्था इन्नी उच्ची बनाना चाहना है, जिन्हों गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते हैं जो नर दुख मैं दुख नहीं मान, सुख स्नेह अर भय नहीं जाकै कंचन माटी मान। जिहो जिहा भी समा जीवन दे विच आवे, दुखां भरिया आवे, मन डोले ना, ते गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने उस मालिक दी शरण दे विच आ जा। प्रभ की शरण सगल पैदा, दुख बिन से सुख पाया। ते अगलियां बख्शिशां की

ऐसे पुरखो बल बल जाइए आप मुकत मोहि तारे। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाहीं होर। गुर की टेक रहो दिन रात, जाके कोई ना मिटे दात।

0: पक्ष लियो तो नानक सीजे।
1: जे मन साता रूप सुख बस है, सुत प्राप्त नीत पंथा संघस है।
0: जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक मुला।
1: जे प्रसाद सुखी सब रसा, सगल समग्री संग साथ दसा।
0: जिन्हें हस्त पाँव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग अव संग।

0: अष्टपदी।
1: जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, तिष्ठा कर कौ रख मन माहे।
2: जय प्रसाद सुगंध तन लावे,
0: तिसको सिमत कर्म गत पावे।
1: जय प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याए सदा मन अंदर।
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख पसना, आठ पैर सिमरो तिस रसना।
1: जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई।

0: गुर प्रसाद नानक जस कहै।
1: जे प्रसाद सुनि कर्ण नाद, जे प्रसाद पीति बिस्माद।
0: जय प्रसाद बोलै अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे वसना।
1: जे प्रसाद हस्त कर चलहे, जे प्रसाद संपूर्ण फलहे।
0: जय प्रसाद

0: साध के संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत।
1: साध का संग मिटा अभिमान, साध का संग प्रगटा सुज्ञान।
0: साध के संग बुझे प्रभ।

0: त्रिष्ट समाना, जैसे राज राम को लागे तुल पवाना।
1: राम ज्ञानी कै धीज एक, जो बसदा को खुदा को चंदन दीप।
0: ब्रह्म ज्ञानी का एह गुनाओ, नानक ज्यों पावक सहज सुभाओ।
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ती निर्मला, जैसी मैल ना लागे जला।
0: ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रकाश, जैसे तार ऊपर आकाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी का नाही अपमान।
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा।
1: ब्रह्म ज्ञानी से जान भय, नानक दिन प्रभ आप करी।
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी के कछ बुरा न भया।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी।
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
1: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा।
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा।
0: ब्रह्म ज्ञानी का होय सो भला, ब्रह्म